0: मुन्ना को बाकी है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कौन वड़ा में क्या दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वैंडना हिंका में ने अफन थी कंको लन्ना
1: तिको तुम हाउ दहाई रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकां कंको देन नहे दी मुन्ना वरहा उपावे
3: كيرت قرآنك قاف سورتك أشار ون آياتك الله تعالى وحي كربا فاوه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما ني كرا عملت بلحت ون ايناك كاريغا حاضر وملائكتك نتي ايناك افس بهن نبنوه
4: मेहरों का डी मेंदा मुंगाले वे दे चाहिए मी देनु के
5: इस्लामी उदरे
6: मी प्रोग्राम का मी कनेस्टेनी इब्राहिम रशीद मुसाली वाफवा इस्लामी उलूम ताऊगे तारीख एके मी फोटो का वाली उन्ता हुशाला देनी रुगिया वाफिरा
7: ગાહન કે વારંગ હંદા ને તે મી હે બાય દોસ્તો ખાંગ અને બાય દોસ્તો ફોણવન જે મેલ ત ફોણવન બર્થડે સે હંદાં કુરંગ અદી મા ઉંદગુ કમે એકમ કો બિલ ત દક્કંત દુવા હકવે સંદાન નુને તેને કરંટ બિલ ફેમ બિલ ફોન બિલ કસ લહિન નુવાન હંદાં વેસુરે વગુતું વગુત ફહિપે મે દોરી કો ફ્યાસાવેસ ટ્રાન્સફર કુરેવે કાગેન બિલ કંડાલા ફ પેમેન્ટ રિક્વેસ્ટ વેસ ફોણવે સારી દો ગેમ મે રીચાર્જ વે સમ ફહિપે અનલિમિટેડ રીલોડ અદી રાસ્ટસ ताज़ा के हुरिहा मुआमलाते फाही पे में दुरी को फाही पे वारा फाही